0: मेरे बाप ने मुझसे पहले ही कहा था कि अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो माफी मांग लेना चाहिए।
1: Hey, limon parang.